0: చిత్రగీతం విన్నారు. ఈనాటి కాంతిరేఖలు కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం, సమయం 8 గంటలు, సమాచార ప్రభాత్ వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే ప్రియాంక అరోడా. मुख्य समाचार. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी. भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया. भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए. राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा. मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया. और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे. अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है. इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा.
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन. ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा. कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो. तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं. इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के. 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है.
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है. इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है. इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है.
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा. और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है. और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है. उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा. उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी.
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत

0: पर्वत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
5: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और

0: माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: Women, we open their bank accounts.
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: Our members of 9 million self-help groups.
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी कडप केंद्रम कर्नाटक संगीतम పుల్లెల భాస్కర ఫణి శ్రీనివాస్ గారి వీణావాద్యం వినబోతున్నారు. ముందుగా హంసధ్వని రాగంలో వీణకుప్పయ్య రచన వినాయక ఆదితాళం

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियाँ। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने हैदराबाद में ए

0: अभी जिक्र किया। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। कानून साज काउंसिल में बुनियादी ढांचे के मंसूबों और ताखिर का शिकार उपुल नारापल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि भूपलपल्ली में 270 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल हाईवे से रबते के लिए अहम तवील अरसे से जेर इल्तवा उपल नारापल्ली फ्लाईओवर मनसूबे में कंट्रैक्टर के दिवालिया होने की वजह से ताखीर हुई, ताहम अब गायत्री कंस्ट्रक्शंस के तहत बाकायदा अदायगियों के साथ काम तेजी से जारी है। मनसूबे को आइंदा जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कानून साज काउंसिल में जवाब देते हुए वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सरकारी अस्पतालों में तशखीसी और इंतहाई निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर तोसी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकारी मराकज में 9 जदीद 3 टेस्ला MRI मशीनें, 3 CT स्कैनर्स और मजीद 485 वेंटिलेटर्स नस्ब किए जा रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचरम में यूथ पार्लियामेंट से बहसते मेहमान ने खसूसी खिताब करते हुए पेदापल्ली के रुकन पार्लियामेंट गडम वंशी कृष्णा ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी दिलचस्पी और सलाहियतों को दरियाफ्त करें, मुतासर कुन शख्सियात को अपना रोल मॉडल बनाएं और आज़म व हौसले के साथ अपना अहदाफ हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने तलबा की जानिब से जमहूरी तरीक़ेकार की बेहतरीन समझ और फ़नून और टेक्नोलॉजी के शोबे में उनकी तख्लीकी सलाहियतों की सताइश की। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि एजेंसी की जानिब से तैयार करदा झीलों में गणेश विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने वजाहत की कि पाबंदियां सिर्फ कपड़ा झील तक महदूद हैं, जहां हयातियाती तनवो के तहफ्फुज़ के लिए काम जारी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि दीगर तमाम झीलों में गणेश विसर्जन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। बुनियादी आबी ज़खायर के तहफ्फुज़ के लिए खुसूसी छोटे आबी ज़खायर भी तैयार किए गए हैं। महकमे मौसमियात ने 10 सितंबर से तेलंगाना में 3 रोज़ा मौसमी इंतबाह जारी किया है। रियासत के कई अजला बशमूल हैदराबाद और मिर्चल मलकाजगिरी में हल्की से दरमियानी बारिश के साथ गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं की पेश खयासी की गई है। दूसरे दिन शुमाली और मशरक़ी अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हुकाम ने सड़कों पर पानी जमा होने, ट्रैफिक में खलल, दरख्त गिरने के खदशात के पेश नज़र बल्दियाती और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को एहतियाती इकदाम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना असेंबली में वजीर बराए उमर मुखन्ना डी श्रीधर बाबू ने बल्दियात एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। इस बिल का मकसद ट्रांसजेंडर अफराद को सियासी नुमाइंदगी फराहम करना है। इस असलाह के तहत रियासत भर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और बल्दियात में ट्रांसजेंडर अफराद को कोऑप्शन मेंबर के तौर पर नामजद किया जा सकेगा। रियासती वजीर सीताक्का ने नल्ला मल्ला के जंगलाती इलाके में चेंचू कबायली बस्तियों में पीने के पानी की फराहमी का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि पानी की फराहमी को मुतबादिल ज़राए से यकीनी बनाएं। आखिर में बुलेटिन की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने हैदराबाद में ASCII कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क भर में हक़ इत्तला'आत एक्ट के यकसा नफाज पर जोर दिया। तेलंगाना ने हिंदुस्तान की पहली जीरो प्रीमियम इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, जिसके तहत तकरीबन 1.3 करोड़ सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को हादसाती मौत की सूरत में 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर फराहम किया जाएगा। राज्यसभा रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी काबीना की जानिब से सिकंदराबाद खाजीपेट रेलवे लाइन की मल्टी ट्रैकिंग की मंजूरी का खैर मकदम किया। और हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने एजेंसी की जानिब से तैयार करदा झीलों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर मुकम्मल पाबंदी की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
1: आकाशवाणी कडप केंद्रम।

0: आप उसको यूटिलाइज कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, की है आप लोगों ने तो उसको इतना, जब वो पीक पे आ गई हैं, जब वो बिल्कुल आपके सामने सब कुछ परफॉर्म करके दे रही हैं, अब अभी जब टाइम आएगा अपने आप ही चले, अपने आप ही होगा। जैसे स्मृति भी आपने देखा बीच में कप्तानी कई मैचेस में कप्तानी भी वाइस कैप्टन रही है, करी है, तो अभी उनमें काफ दम है। मुझे लगता है कि ये सिलेक्टर्स ने अभी तक जो भी डिसीजन लिया ठीक लिया अभी तक।
1: राइट, मुन्ना आपके पास आती हूँ। अगेंस्ट बांग्लादेश अगर हम देखें तो वुमेन्स टी ट्वेंटी इंटरनेशनल के अंदर भारत के आंकड़े 21-3 इन फेवर ऑफ इंडिया, बहुत ओवरवेलमिंग आंकड़े हैं। एंड दूसरी चीज, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भी अगर हम देखते हैं एशिया कप के अंदर, तो भारतीय टीम ही वो इकलौती टीम है जिसने 2 बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया हुआ है। नाउ गिवन द फैक्ट दैट ये स्लो टर्निंग विकेट है, भारत टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी सारे पॉइंटर्स हैं, मतलब शुरुआत में हमारे दो एक पार्टनरशिप है जो हमें चाहिए, मिडिल ऑर्डर अस्थिर है। Do you still think that India can get their way away from Bangladesh in this game by putting on a commanding score on board today?
2: 100%, क्योंकि देखिए आपके पास एक इनफॉर्म बैटर है स्मृति, जो इनिंग वो खेल कर यहाँ आई है, निश्चित तौर पर उनका मनोबल काफी बड़ा होगा। और 69 रन दूर हैं वो T20 क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर बनने से, और पिछले भी मैच में वो मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। इसका मतलब है कि उनका बल्ला चल रहा है। शेफाली

0: एक अच्छी इनिंग खेल चुकी है। ऋचा घोष से ड्यू है एक अच्छी पारी, और जैसे अभी हरमन की बात हम कर रहे थे, 5 रन और 10 रन बनाए उन्होंने, तो हरमन को यहां पर जरूर एक कप्तानी पारी मिडिल ऑर्डर में खेलनी होगी। प्रतिका रावल को साबित करना होगा कि जिस प्लेयर की रिप्लेसमेंट के तौर पर वो आई है वो चयनकर्ताओं का फैसला सही था। तो यहां भारतीय मध्यक्रम और शीर्ष क्रम के सामने चुनौती कि उनको मारूफा का सामना करना है, तो यहाँ काफी कुछ स्टेक पर है। और मुझे लगता है कि इतना एक्सपीरियंस इस कोर ग्रुप, आप देखिए वही है, काफी समय से वही है, तो इतनी आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है और इतना एक्सपीरियंस भी है कि आपको यहाँ पर, यही तो मंच होते हैं परफॉर्म करने के लिए, यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे।
1: कार्यक्रम में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, बताएं क्या जानना चाहते हैं और कहां से बोल रहे हैं आप। जी जी बताएं। सबको उम्मीद है कि स्मृति दूसरा शतक लगाएं, वैसे भी रिकॉर्ड बुक में कई पन्ने वो जोड़ चुकी हैं पिछले मैच में। रविंद्र
2: देखिए, पहले जो मैचेस हुए हैं आपने कि हांगकांग और थाईलैंड वैसे जहां नॉर्मली टीमें थी, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेलने का और जो लेवल है, आप देखिए इनसे कम्पीट करना मुझे लगता नहीं कि इनके अगेंस्ट जो 100 करके भी शायद उनको 100 तो 100 ही होता खैर, लेकिन इतनी खुशी मिल पाएगी। बेटर यह जैसे बांग्लादेश और फाइनल जो आप खेलते हैं, तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि जब अच्छी टीमों से खेलने जाते हैं तो वहां पे आपको तैयारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनके जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, वहां पर डाउट पहले भी लगता है, कई मैचों में देखा मैंने। आप देखिए जो इनके चार जो बाहर बैठे होते हैं उसमें 3 बॉलर होते हैं और एक विकेट कीपर तो आपको रखना ही पड़ता है उसके लिए। आप दूसरी टीमों के जब इवन आप बांग्लादेश के भी देखेंगे, एक ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, ये हर वैरायटी है। यहां पे आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपका कोई बैट्समैन कोई बैटर आपको कोई फिट लगती है उसकी कोई इंजरी पहले भी

0: గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్ అంటారు ఆదికవి నన్నయ్య. మనం నిలబడిన ఈరోజు రేపటికి గతమవుతుంది. అది చరిత్రగా మారి భావితరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. చరిత్రలో నిలిచిపోయిన ఎందరో మహనీయుల త్యాగాలను, మరపురాని ఘట్టాలను, విప్లవాత్మక మార్పులను, సాహిత్య, రాజకీయ, సాంస్కృతిక రంగాల అరుదైన సమాచారాన్ని సంక్షిప్తంగా చరిత్రలో ఈరోజు శీర్షికన ప్రతిరోజు మీకందిస్తోంది ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం. తప్పక వినండి చరిత్రలో ఈరోజు. ప్రతిరోజు ఉదయం 7:15 ప్రసారమయ్యే కాంతిరేఖలు కార్యక్రమంలో
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం. సమయం 8:45. ఇప్పుడు వినండి సమాచార సంధ్య హిందీలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార సంధ్య కే సాథ్ మే ముఖేష్ కుమార్ బల్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है. पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया. भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना. गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की. शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया. भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया. केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया. भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है. श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं. ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग

0: अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टेब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। 2 दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। 0 हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul, including a gold. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
8: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
8: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
1: ISRO, which stands at the heart of this journey, has earned global admiration for its excellence and cost-effective mission. Its capability serves farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management and navigation. More than 430 satellites from 34 countries have traveled to space aboard Indian rockets. ISRO's technologies and partnerships serve not only India but the wider world.
8: New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS Summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. India is the current chair of the influential grouping. Several world leaders will participate in the summit, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping are expected to arrive tomorrow. The BRICS summit will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Our correspondent reports that preparations are underway in full swing ahead of the prestigious event.
2: The national capital is all decked up to welcome world leaders for the summit, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to touch down in Delhi tomorrow. The Delhi police has made elaborate arrangements in order to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. Around 15,000 Delhi police personnel and 200 companies of paramilitary forces have been deployed in the national capital. Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal said that specialized surveillance cameras have been deployed along routes to be used by the visiting dignitaries.
9: At least 16 heads of state or heads of international organizations are participating in the event. The Delhi police has made extensive arrangements for this occasion. To put these arrangements in place, we have ensured multi-agency coordination and paid close attention to traffic management. We have made detailed deployments covering security, traffic management and law and order. Our objective is to ensure that we organize a safe, secure and seamless event.
2: India's chairship is centered on the four pillars of the theme: resilience, innovation, cooperation and sustainability. Since assuming the chairship, over 350 meetings have been held. With Anand Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
8: Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said, as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirm their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defense, clean energy, advanced technologies and talent mobility. This is Akashwani giving you the news.
10: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
8: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan,

0: an off spinner Shefali, and Shaun is a right-handed batter, could have dispatched it. This time she.
1: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Mohammad Zubair. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
3: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear, that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
3: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. The presidents of Russia and Brazil are set to arrive in the national capital later tonight to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive tomorrow morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to land in New Delhi tomorrow. The BRICS Summit 2026 will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirmed their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defence, clean energy, advanced technologies and talent mobility. Union Home Minister Amit Shah today met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi. They discussed strengthening cooperation in social development, irrigation, cooperatives, natural farming including millets and solar energy. In a social media post, Mr. Shah said India cherishes its bond with the Aga Khan Development Network, tied by a shared commitment to human development. The minister also reaffirmed shared commitment to advancing these partnerships for sustainable development and the greater good of humanity. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. And that's the end of this news bulletin.

0: And we have it there, a comprehensive, confident, a very convincing victory out there by the Indian women today. 149-6 that the Indian women made in 20 overs. Bangladesh was able to put up only 109 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. And thereby, the Indian women finally storming into the finals of the ongoing Asia Cup 2026. I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and co-host for the evening, Anand Srivastav. Good evening, Anand.
1: Good evening. और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत.
2: शुक्रिया.
0: ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को भी बधाई दे दें कि भारतीय महिलाएं अब की बार एक बार फिर से एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एंटर कर चुकी है. द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री बाय इंडिया, इंडियन वुमेन शुड आई से, इन क्रिकेट इन एशिया कप फाइनल्स. मोना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
2: बिल्कुल, 10वां टूर्नामेंट है. 10 बार इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तो डोमिनेंस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो यही है. और जिस तरीके से आज खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, हम पहले बात कर रहे थे कि रन में शायद हम पीछे रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने वो कमी पूरी कर दी. और स्पिनर्स, खास तौर पे यहाँ बात करेंगे दीप्ति शर्मा की, क्या मैच विनर प्लेयर है. फॉर्मेट कोई हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में, और अब भी आप देखिए कि सबसे ज्यादा 11 विकेट उनके नाम हो गए हैं एशिया कप में भी. तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन.
1: जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा का. 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, साथ ही साथ नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, दोनों विकेट उनको आखिरी 2 गेंदों पर मिले हैं. साथ ही साथ श्री चरणी, जो इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस साल भारत की लीडिंग T20I विकेट टेकर हैं, उनके नाम एक विकेट. और प्रेमा रावत ने भी 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया. रविंद्र, देखने में ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा. एक समय लग रहा था कि हम 10-15 रन पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी इस रन चेज में टक्कर देता नजर नहीं आया.
3: देखिए, शुरुआत में तो जैसे 2 ओवर निकले थे, 3 ओवर निकले, तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर शेषा शुरुआत हो चुकी है. लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इत्ता है, श्री चरणी. ये बॉलिंग एनालिसिस, शायद उसके ज्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो 4 ओवर में 14 रन और एक मेडन है, एक मेडन T20 में होना बहुत बड़ी बात है. और ये जो बॉलिंग दिखा रहा है, ये पूरे मैच को पलट देती है. श्री चरणी इस समय एक स्पिनर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो श्री चरणी बॉल कर रही है, वो वाकई उसको लेवल बहुत ऊपर है. इसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी टीमें इस समय धराशायी होती दिख रही है.
0: जी, और इसी बात को थोड़ा आगे लेके भी जाए तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट में, मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने शुरुआती फेज में, हम देखेंगे पहले 6 ओवर्स के अंदर, कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि एक फास्ट अटैक के थ्रू अग्रेसिव क्रिकेट से इनको लीड दिलवा सके, बट दे वर नॉट एबल टू स्टिक टू दैट मोमेंटम एंड पेसिंग. कंटिन्यूअस विकेट लॉस affected the Bangladeshi women very strongly today, Mona.
2: बिल्कुल, आप देखिए कि 4 विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का. और शुरुआत में लगा था कि एक दो अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था जबरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे. पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच बाद में भी छूटा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फील्डिंग लैप्सेस भारी पड़ जाए या बांग्लादेश के बैटर्स आज अच्छा खेल जाएंगे. लेकिन वो जो नियमित अंतराल पे उनके विकेट गिरते रहे और वो मोमेंटम बन ही नहीं सका, जिसको कहते हैं कि 150 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक एंकर चाहिए जो पारी को संभाल के खेल सके और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी दे. वो कहीं नजर नहीं आया. गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट होते चले गए.
1: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका. जी नमस्कार, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं. ये कह रहे हैं शेफाली वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इनको वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई.
3: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको याद आई. वीरेंद्र अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, चाहे 2-3 चांसेस मिले, लेकिन वाकई अच्छी बैटिंग करके उन्होंने टीम को स्कोर को 150 तक पहुंचाया, नहीं तो टीम का स्कोर लग रहा था कि 125-30 पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लेकिन ऐसी बैटिंग उनसे कंसिस्टेंटली चाहिए, क्योंकि 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं। हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश को भी पहले 6 ओवर में 40 रन तो चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्पिनर्स के बाद गेम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए वो मीडियम पेसर्स को अटैक भी कर रहे थे शुरू में कि इनको जितने ज्यादा रन बटोरे जा सके। लेकिन वो शेही चन्नी ने वो तीसरे ओवर में आके वो गेम को पाछा पलट दिया।
0: सवाल मेरा आपसे मोना ये होगा कि हम बात करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट में काफी बेहतरी हुई है ओवर द इयर्स, इजाफा जिसको हम कहते हैं उनके खेल के प्रदर्शन में भी, लेकिन क्या आपको सही मायने में दिखता है दैट द बांग्लादेशी विमेंस क्रिकेट हैज इवॉल्व फॉर द बेटर और देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन बांग्लादेशी विमेन क्रिकेट?
2: देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। बेहतरी हुई है, उनके पास कई अच्छी खिलाड़ी आए हैं जिनमें से एक उनकी स्विंग बॉलर है मारूफा अख्तर, लेकिन एज अ टीम एज अ यूनिट आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाना होगा। अगर एक डिपार्टमेंट कम रह गया है तो दूसरे को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जैसा चैंपियन टीमें करती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी है अभी जो नजर नहीं है, जो नजर आती है कि आप जब तक आईसीसी टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, एक पैरामीटर होता है आपके जो आपने प्रगति की है, जो विकास किया है, जो आपके प्रदर्शन में सुधार आया है, उसके लिए आपके कैबिनेट में ट्रॉफीज भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस मामले में अभी बांग्लादेश जब तक कोई बड़ी आईसीसी खिताब नहीं जीतता तब तक हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वो विकास की राह पर है।
1: जब हम जीतते हैं तो बहुत सारी कमियां छिप जाती हैं रविंद्र जी। आज 40 रन की इस जीत में एक जो कमजोर पहलू था वो भारतीय फील्डिंग थी। 3 कैचेस छूटे, कुछ मिस चांसेस हमने रन आउट में भी देखे, और प्रतिका रावल इस टूर्नामेंट में अब तक 4 ड्रॉप कैचेस उनके नाम है।
3: देखिए, बिल्कुल सही कहा क्वेश्चन आपका कि ये जीत में बहुत कुछ छुप रहा है, लेकिन ये आज बांग्लादेश की मतलब इमेच्योर बैटिंग थी। कहीं पे कोई बैटिंग लग नहीं रही थी कि कोई जिस हिसाब से लेवल है वहां खेलना चाहिए। प्लेयर्स एक ही शॉट खेले जा रहे हैं, स्वीप करे जा रहे हैं। उनको कुछ ने ये नहीं बताया कि ऑफ साइड में कवर्स पर सामने खेलना चाहिए, वी में खेलना चाहिए। इसके लिए अभी इनको बहुत काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से बांग्लादेश की जो बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग में नो डाउट वैसे बड़ा ने बताया, अच्छी इन स्विंगर बॉलर मिल गया आपको, एक दो बॉलर अच्छे हैं, लेकिन आपको बैटिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो आज जिस हिसाब से इंडिया ने फील्डिंग करी है और जिस हिसाब से इंडिया में सिर्फ चन्नी को छोड़ के बाकी बॉलर इतने ऐसे नहीं थे कि इनको रन नहीं बनाए जा सकते थे। अल्टीमेटली आपने कोई बैटिंग नहीं करी लेकिन तब भी 40 रन का डिफरेंस रह गया। अगर दो प्लेयर आपके अच्छी बैटिंग करते तो ये रन आराम से चेज हो सकते थे।
0: या एंड आई थिंक समवेयर ये भी चीज हमने देखी आज की, जिस तरह से जो बांग्लादेश का इनिशियली अप्रोच दिखा था कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लगा कि वो कोई एक प्लान लेके उतरे हैं कि पावर प्ले में कितने रन बनाने। बहुत जल्दी उनका वो सारा अप्रोच डिसॉल्व होता हुआ नजर आया, रेकलेस इम्पल्सिव शॉट्स, टारगेट इतना बड़ा था नहीं, फिर भी उनके अंदर जो एक कहते हैं ना एक मचलता दिखाई दी कि रन्स को जल्दी जल्दी बटोरो किसी तरीके से। द इमैच्योरिटी इन देयर क्रिकेट वाज वेरी ऑब्वियस मोना,
2: इमैच्योरिटी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर, सेमीफाइनल का प्रेशर भी हावी।

0: हो गया टीम पर और वो उस प्रेशर में विकेट एक के बाद एक गवाते चले गए। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत गहराई नहीं है उनकी बल्लेबाजी में, दो या तीन बल्लेबाज हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी, उनमें एक कप्तान निगार सुल्ताना भी है, तो जब वो नहीं चल पाए तो निचले क्रम से तो उम्मीद करना ही बेमानी था।
1: जी हाँ, उनका लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं चला। जरूर शुरुआती दौर में जो ओपनिंग बैटर्स हैं उन्होंने जरूर प्रदर्शन किया, लेकिन वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया मिडिल ऑर्डर पर। और कहीं ना कहीं जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अनुभवी भारतीय गेंदबाजी है, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे इनफॉर्म श्रीचारिणी हो, साथ ही साथ प्रेमा रावत, जिनके लिए बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट घट रहा है, वो भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। नंदिनी ने भी आज दिखाया कि क्रूशल मौकों पर वो किस तरीके से विकेट निकाल सकती हैं टीम इंडिया के लिए। क्रांति गौड़ एक पहलू वो भी है चर्चा करने के लिए कि शुरुआती ओवर्स वो करती हैं लेकिन मनचाही सफलता नहीं मिल रही, इस पर हम बाद में लौटेंगे। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां सबसे पहले बांग्लादेश की कैप्टन को सुनते हैं कि वो क्या कह रही है।
2: Probably, I thought about 21, 20 runs much more, isn't it?
3: Yeah, actually we didn't bowl real, bowl well today because what we have done in the last three games, we bowled really well as side of I guess we fielded really well. We lost so many chances over there, so yeah, it happened.
2: What do you put down to? Probably pressure of playing a semi-final against India?
3: I don't think so. No, that was the pressure, I guess. It was just the bad day, what happened to the, through, I guess, the whole team. And yeah, sometimes, you know, we really wanted to restrict them in a total that we can chase, but somehow we didn't bat as well in the power play.
2: So you won the toss, bowled first. Did you ever think the pitch will get so slow come the second innings?
3: Because we played the three games, it was behaved like that, but we were expecting like maybe we will get more a good wicket this time, but still we bowled well, we created our chances, but we couldn't capitalize them, so they batted really well.
2: Bad luck today. Any messages, any message since you're playing the last game today?
3: So I think we have achieved a lot of things from here, I guess. One thing that we have learned from here that we kept ourselves very limited here. So in future, we really wanted to play our all-out game and we just need to execute ourselves in the middle.
2: Tell you what, enjoyed watching you guys play. Very well done. All the best for the rest of the year for you.
3: Thank you so much.
2: Thank you very much. Nigar Sultana, the captain of Bangladesh. Right now, it's my duty to announce the player of the match. No surprises here. For 64 of 40 deliveries, exclusive 7-4s and 3-6s, none other than Shefali Verma. She'll collect the award, the check from Miss Jamila Yusuf. And after that, she'll collect the trophy from Miss Neetu David. Played exceptionally well, scored her second half century of the tournament. Very powerful in the top order, used the power play really well. Very well done, congratulations, you batted superbly today.
4: Yeah, there's lots of humid out there, and even in the middle also, sometimes I can't even breathe, so just I'm trying to, you know, just inhale, exhale more. And just in the starting, I didn't get that balls, but I'm just trying to, you know, just play grounded, and there's a bit of chance with the gold grains. So yeah, I'm just trying to build my inning, so just these things happen.
2: I think anyone deserves a bit of luck, but looking at how you played in the power play, Shefali, that was urgency when it comes to the power play, trying to, you know, score big runs with the new ball. Was that something you spoke in the dressing room as well? As the ball loses the hardness, it'll be tough in the middle overs.
4: Yeah, of course. As I said earlier as well, in the sixth over, there is easy to score runs. So we're just trying to take lots of runs on that six overs. So I know it's my job to hit some sixes and fours in my in the power play. So I'm just trying to do that.
2: I enjoyed watching you bat. Very well done today, and all the best for the finals as well.
4: Thank you.
2: Thank you very much. The Shefali Verma, the player of the match. Now, I'd like to invite Harmanpreet Kaur for a quick chat before she joins me. She'll sign the match ball as Miss Jamila Yusuf will hand over the ball to be signed by the skipper of India, Harmanpreet. Unbeaten so far, everything going well. Harmanpreet must be a happy, happy captain with everything going wrong.
5: Yeah, definitely. I think the way things are going, really happy the way we have been batting and bowling. Yeah, things are going well.
2: I thought how the pitch behaved in the second innings. Were you just surprised how the pitch became even more slower compared to the first innings?
5: Yeah, I think there was a value to the good balls. If you were, you know, giving refs to the ball, there was value to that ball, and no doubt about that. And I think both the teams, spinners bowled really well today. Batters were trying hard to get those runs, but I think there was a lot for spinners, and I think they used this pitch really well.
2: Must be really pleasing to watch everyone contributing. Now, for an example, I like to see the small things. Deepthi Sharma, her cameo, 13 of 6 deliveries, and how she bowled. And even Shefali, one of the few overs she bowled. So everything clicking very beautifully leading up to the final, isn't it?
5: Yeah, definitely. I think the small partnership worked really well, especially when you have pitch like this where you don't know, you know, how the things are going to be. And I think small things matter a lot. I think all the partnership today we had while batting, those were very crucial. And even Richa's batting, Richa came and, you know, played few really good shots. I think that was also very valuable. And I think with ball also, Deepthi was excellent today.
2: Yep.
5: Whenever we needed, she came up and gave us through a few breakthroughs.
2: I thought you summed up really beautifully the last question. All the very best to you for the final as well. Well done.
5: Thank you so much.
2: Thank you very much. Right, this captain of India, Harmandeep Kaur. That's it from the presentation.
6: Well, a very happy Indian captain out there, Harmanpreet Kaur, and all the reason more for her to be so, because it's been an unbeaten run for the Indian women in the ongoing Asia Cup 2026. And ek cheez Mona jo unhone baat kahi abhi post match ceremony mein, which stood out for me, was ki there was value to the good balls, and on both the teams, of course, spinners ne bahut achhi bowling kari, lekin achhi ball ko izzat dena बहुत जरूरी था. एंड पॉसिबली दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वर्क्ड बेटर फॉर इंडिया एज कंपेयर टू बांग्लादेश.
0: जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रेकलेस बैटिंग बांग्लादेश की रही, वो अच्छी बॉल को इज्जत देने की ही बात है कि भारतीय बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों का इंतजार किया, अच्छी गेंद को इज्जत दी. तो मेरे ख्याल से हरमनप्रीत का कहने का मतलब वही था कि जो रेकलेस शॉट्स थे वो हालांकि कुछ बचा जा सकता था, लेकिन एक कैप्टन का जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से ये है कि अच्छी गेंदों को उन्होंने इज्जत दी और ढीली गेंदों को नसीहत दी, जो बांग्लादेश की टीम, जैसे आप कह रहे, नहीं कर पाई. और जिस तरह से हमने देखा उनके विकेट जिस अंदाज में गिरे हैं, तो उससे यही है कि जो आपके यहाँ की अच्छी गेंदों को इज्जत देना.
1: एक बार फिर आज के मैच में दीप्ति शर्मा ने दिखाया कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं, और जिस लेंथ पर वो खास तौर पर गेंदबाजी कर रही थी, बांग्लादेश के बैटर्स सोच रहे थे कि फ्रंट फुट पर खेलें, बैक फुट पर खेलें, और कुछ एक गेंद जो स्पिनर्स के लिए कही जाती कि खिंची हुई लेंथ पर गेंद, और वहीं पर उनको 3 विकेट मिल गया.
7: बिल्कुल, देखिये ये ना एक्सपोजर की बात है, खेलने की बात है, कितना आप खेलते हैं उसको बहुत मैटर करता है. जो इंडिया के बॉलर्स खेलते हैं, इनके पास एक्सपोजर है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना खेलते हैं उतना मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश की टीमों के पास इतने रिसोर्सेज भी होंगे या इतनी सब मैचेस मिलते होंगे जितने इंडिया को मिलते हैं. इसका यही चीज का बेनिफिट है. लेकिन ये जो फिर जो आपने बताया है, आप ये देखिए जब अच्छी टीमें आती हैं तो इस चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. जहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड कप वगैरह में इंडिया जाती है तो उसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने हम लोग नहीं टिक पाते हैं, वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों मात खा जाते हैं, क्योंकि वो उनकी फील्डिंग लेवल और हमारी फील्डिंग लेवल में बहुत फर्क है. ये इंडियन जो हमारी टीम को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनसे जीत तो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, जहाँ आपने कैचें छोड़ी हैं, और जो अभी उन पर ज़्यादा बैट्समैन बैटर दिख नहीं रहे थे जो कि अटैक कर सकें, लेकिन अच्छी टीमों में आपको अच्छे बैटर मिलेंगे और अच्छी फील्डिंग भी मिलेगी, वहाँ पर आपके जो कैचेस बहुत महंगे पड़ने वाले.
6: राइट, मोना आपके पास आती हूँ. उससे पहले मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ इस वक्त एक श्रोता जुड़ गया है, उनसे भी बात कर लेते. नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे? गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप. थैंक यू सो मच, थैंक यू. जी, जेमी रॉड्रिक्स के बारे में बता दें कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो मैच का हिस्सा नहीं बन पाई है काफी समय से. लेकिन दूसरा, इन्होंने यहाँ पर हमारे बॉलर के ऊपर बात करी है मोना, और इनका ये कहना था कि जिस तरीके से प्रेमा रावत है, उनकी जगह राधा यादव होती तो शायद ज्यादा बेहतर. बॉलर का एक हमें कह लीजिए सब्स्टिट्यूट या फिर ऑप्शन मिल जाता। प्रेमा रावत ने चार ओवर में 21 रन देके एक विकेट निकाला एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.2 एंड दैट इन इटसेल्फ, जिसमें उनकी बांग्लादेश के कप्तान यानी निगार सुल्ताना जी, वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रहा है।
0: आप मुझे बताओ T20 क्रिकेट में 6 से नीचे की इकोनॉमी से अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और इम्पोर्टेंट विकेट भी ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में आप उसके टीम में रहने पर सवाल उठा सकते हो। जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और सिर्फ इस मैच में नहीं, प्रेमा ने थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टीम के लिए, और अभी तक भारत का अपराजय रहा है अभियान जो है, एक भी मैच हम हारे नहीं है, तो एक अच्छा खासा विनिंग कॉम्बिनेशन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी खिलाड़ी की भूमिका पर आप उंगली उठा सकते हैं।
1: प्रेमा रावत ने इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले से पहले 5 विकेट लिए थे, तो अच्छी फॉर्म में हैं और आज भी उन्होंने एक सफलता हासिल की है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी रेड्डी साहब स्वागत है, बताए क्या जानना चाहते हैं आप।
8: हमारा टीम फाइनल में आ गई, के लिए मुबारकबाद। और फाइनल में हमें एक चेंज के साथ आना चाहिए कि प्रतिका रावल सॉरी भारती फुलबॉल के बैट पर लगने से बॉल इंटर कर रहे हैं, इसीलिए इनको चेंज करना चाहिए। और फाइनल में भारत हमेशा की तरह अच्छी खेल पेश करना चाहिए,
1: भारती फुलमाली को लेकर इनका सवाल है। लेकिन बहुत ज्यादा गेंदे हैं इस टूर्नामेंट में, उनको खेलने को नहीं मिली है रविंद्र, बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं श्रोता भारती को लेकर।
7: बिल्कुल, देखिए उनको पूरा मौका नहीं मिल पाया भारती को भी, लेकिन पूरी तरह आप देख नहीं पाए, अच्छी अच्छी बैटर है, लेकिन आप ये देखिए जो बाहर के जो बेंच रहते हैं उसमें कोई बैटर नहीं है, आप खिलाएंगे किसको, आप सारे बॉलर्स हैं और एक विकेट कीपर है, तो कोई बैटर नहीं आपके पास, तो मुझे लगता है कि अब आपको इन्हीं से जाना पड़ेगा और इन्हीं पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उम्मीद करिए कि ये अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे।
6: राइट, ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनल्स अब तो, और भारत के चांसेस मोना आपके पास भी आऊंगी रवि, आपसे पूछूंगी आप दोनों किस प्रकार से देखते हैं फाइनल के अंदर। अभी मैं पता होना चलना है कि कल के मुकाबले में जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होने वाला है, जो भी उस मुकाबले को जीतेगा भारतीय टीम का अपोनेंट बनेगा फाइनल्स के मुकाबले में, पर भारत के चांसेस आपको किस तरीके के दिखते हैं?
0: देखिए अभी तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि कौन खेल रहा है भारत के खिलाफ। वैसे ज्यादा चांसेस है कि श्रीलंका से ही फाइनल होगा, श्रीलंका पहले भी खिताब जीत चुका है 2 बार, और इस टूर्नामेंट में अगर श्रीलंका की बात करें तो बांग्लादेश ने ही उसे बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो मुकाबला भारत के खिलाफ खेलना, वैसे भी 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम है, एक प्रेशर होगा, और इतनी कन्विंसिंगली जीत कर जा रही है फाइनल में टीम, तो अब देखना होगा कि कल श्रीलंका का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसके आधार पर ही कोई कयास, और उससे पहले भारत को अपनी जो कमजोर कड़ियां हैं उनको दुरुस्त करना होगा।
1: जी हाँ, कमजोर कड़ियों की जब चर्चा हो रही है तो पहली कमजोर कड़ी जो भारत का है वो मध्यक्रम, आज भी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो पाया, चाहे हरमन का बल्ला हो चाहे प्रतिका रावल हो, ऋचा घोष भी उस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही है। लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि भारती की चर्चा हुई, बहुत कम गेंद उनको खेलने को मिली, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा ने आज जरूर बेहतर प्रदर्शन किया। और दूसरी कमजोर कड़ी जो इस टीम इंडिया की है वो है फील्डिंग, क्रूशियल मौकों पर अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप उस मोमेंटम को लूज करेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? जी प्रकाश जी, जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
7: नमस्कार,
8: तो सर हमारे विमेन्स टीम में जो इंडिया विमेन्स टीम है, आप वो बेहतर जवाब दे पाएंगे कि सर हमारे मिडिल ऑर्डर में ना फायर पावर की कमी है, या फिर देखो मेंस टीम में जैसे कोहली है, स्ट्राइक रोटेट बार बार होती है, तो
7: देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटिंग मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं वीकनेस लग रही है, जेमिमा के ना होने से भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है बीच में टीम में। भारतीय अभी पूरी तरह बैटिंग अब उनको पूरी तरह मिली नहीं है और हरमनप्रीत अभी उतनी से फॉर्म में नहीं है। जब तीन चार बैटर आपके सामने ऐसे केसेस आ जाएं तो मिड ऑर्डर हमेशा थोड़ा चरमरा सा जाता है। स्मृति उसकी कमी को पूरा कर रही है, शेफाली पूरा कर रही है और प्रतिका रावल से हमें उम्मीद है कि इस समय प्रतिका रावल का चलना जरूरी है और मुझे लगता है कि फाइनल में थोड़ा जो भी आज कमियां रहेंगी उनको मैनेजमेंट ठीक करेंगी और ये बैटिंग आपको थोड़ा बेटर होगा, अगले मैच में बेटर दिखेगी फाइनल्स में।
6: राइट, सो अगले मैच में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यानी अगला मैच तो अब क्या कहें, सिर्फ फाइनल्स ही है एंड द बिग डे जो कि रविवार को होगा जब भारतीय टीम सामने आमने होगी इधर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसमें हमें ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि प्रतिका रावल जिन्होंने आज एक बार फिर से एक मेडियोकर पारी खेली हम कह सकते हैं, पारी को संभालने वाले किरदार को निभाने आई थी नंबर तीन पर लेकिन खेल की गई जिसमें 24 में 20 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों में, बट उससे ज्यादा बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न जो मुझे लगा वो थी हरमनप्रीत कौर मोना जिन्होंने काफी बॉले 16 गेंदे इनिशियली वेस्ट करी और फिर मोमेंटम पिकअप किया। अगर श्रीलंका संडे को हमारे सामने आती है तो ये पॉइंटर्स या ये जो एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं बहुत बुरी तरह से भारतीय टीम के एक्सप्लॉइट हो सकते हैं अगर हमें अच्छी ओपनिंग नहीं मिली और उस दिन सामने बांग्लादेश नहीं होगी।
0: मैं मैच के बीच में देख रही थी कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि आज टॉकिंग पॉइंट क्या होगा, हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक रेट या ड्रॉप कैचेस। तो मुझे लगता है कि ड्रॉप कैचेस पे तो काफी बात हो गई है लेकिन हरमनप्रीत का स्ट्राइक रेट लगातार, वर्ल्ड कप में भी काफी इस पर बात हुई थी लेकिन बाद में एक पारी उन्होंने अच्छी खेली थी। तो जब आपके पास स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो सबसे अनुभवी और अच्छी बल्लेबाज है हरमनप्रीत, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बड़ी पारियां ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, तो लोगों को उसी हरमनप्रीत कौर का इंतजार है जो कप्तानी पारी खेले, मोर्चे से अगुवाई करे, वो कहीं इंटेंट अभी नजर नहीं आ रहा है। तो फाइनल मैच है, उम्मीद यही करेंगे कि कप्तान एक उस पुरानी हरमनप्रीत कौर की झलक देखना चाहेंगे जो मैच जिताती थी अपने बल्ले से।
1: रविंद्र जी, जब टीम जीत रही होती है तो कोई भी कप्तान या टीम मैनेजमेंट जिसमें कोच भी शामिल होता है वो टीम की संरचना में बदलाव नहीं करना चाहता। यहाँ पर जैसे कि हम वीक लिंक की बात कर रहे हैं तो वीक लिंक में हम देख रहे हैं कि मध्यक्रम है जहां पर ऑप्शंस नहीं है, क्रांति गौड़ को विकेट नहीं मिले हैं चूंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, ज्यादातर स्पिनर से गेंदबाजी कराई जा रही है। क्या देखते हैं यहाँ पर, रेणुका ठाकुर भी हैं इस 15 सदस्यीय टीम में बड़े मैच में, चूंकि हमने देखा कि मारूफा अख्तर को जिस तरीके से स्विंग मिल रही है रेणुका उसमें महारत हासिल कर चुकी है, क्या उनको चांस देने के बारे में सोचा जा सकता है?
7: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही पाया कि क्रांति गौड़ के बदले आप रेणुका को चांस दे सकते हैं क्योंकि रेणुका का बॉल स्विंग भी ज्यादा होता है और क्रांति उतना अच्छा बॉल नहीं कर पा रही जिस हिसाब से है। ये भी डिपेंड करता है कि विकेट टर्निंग ट्रैक्स है तो मीडियम पेसर्स को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्रांति से अगर वो रेणुका नेट्स पे अच्छा बॉल कर रही है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि अगर उनको उनका टच अच्छा है तो खिलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
6: आप क्विकली थोड़ी सी एक बार कल के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, श्रीलंका अप अगेंस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका का मैन अनडिफीटेड अनबीटन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अपने ग्रुप बी के तीनों मुकाबले ये टीम जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। पाकिस्तान समहाउ हैज पिक्ड अप द मोमेंटम एट द राइट टाइम बिकॉज जस्ट कहते ना पीकिंग एट द राइट टाइम जो कि एक चीज वो एक टर्म होती है, पाकिस्तान उस तरह की स्थिति में है। कल का मुकाबला आप किस तरह से आंकती है मोना?
0: मुझे लगता है श्रीलंका का पलड़ा ही भारी रहेगा, एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई मैच विनर है पाकिस्तान, भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन पाकिस्तान कर रहा है मोरल बहुत डाउन हुआ होगा कहीं ना कहीं क्योंकि ग्रुप फेज में एक भारत ही था जिसके खिलाफ हार्ड टेस्ट था उसके लिए और उसमें वो बिल्कुल ही 19 साबित हुआ, तो काफी कठिन चुनौती है पाकिस्तान के लिए कि रीग्रुप करके श्रीलंका जैसी टीम के सामने अच्छा परफॉर्म करना, तो मुझे लगता है इस मैच में श्रीलंका का पलड़ा ही भारी होने वाला है।
1: रविंद्र, कल दो ऐसे बोलर्स के बीच भी फाइट देखने को मिलेगी, एक तरफ चमारी अट्टापट्टू जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 विकेट लिए, पाकिस्तान के लिए नासरा ने 6 विकेट चटकाए, तो वो बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
7: बिल्कुल होगा, नो डाउट की, लेकिन जो इस समय श्रीलंका का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है मुझे लग रहा है कि और जो उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग में फर्क है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग और श्रीलंका की बैटिंग में ही फर्क रह जाएगा और वो श्रीलंका ही एकमात्र ऐसी टीम लगती है भारत रात के बाद इस एशिया कप में, जो कि जहां पे अब उनके जो कप्तान हैं बहुत ही बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो T20 में अकेला ही मैच करके लिए मैच खत्म कर सकते हैं, 70-80-90 रन बनाने की दायरा में रखते हैं वो। तो मुझे लगता है कि यहां पे उनको जो कप्तान अट्टापट्टू है उनका उनका उनका सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा।
6: राइट, थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। हमें पता है पाकिस्तान है, इंडिया के जब मुकाबले होते हैं तो एक राइवलरी ऑन फील्ड कही जाती है, लेकिन पर से वो राइवलरी अब उतनी दिखती नहीं है। खासतौर से अगर हम पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस की भी बात करें तो थाईलैंड के अगेंस्ट 119 में थाईलैंड ने पाकिस्तान को समेट दिया था या रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। भारत के खिलाफ वाले मुकाबले को तो हम भूल नहीं सकते, मेयर 55 रन रहे। सो पाकिस्तान का जो कहते हैं ना एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होगा इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आते हुए, मनोस्थिति भी उसके साथ साथ, आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू प्ले फॉर देयर प्राइड एंड पुट अप अ गुड फाइट टुमारो?
0: वही मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान का मोरल पूरी तरह से डाउन होगा भारत के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन रहा है। और ये जो राइवलरी की बात करते हैं, मुझे लगता है अब ये बंद कर देनी चाहिए, कोई राइवलरी रह नहीं गई है, ना मेंस क्रिकेट में ना विमेन क्रिकेट में। जमीन आसमान का फर्क है प्रदर्शन में, और उसमें एक एक्सपोजर की भी बात है। इंडियन क्रिकेटर्स इतना क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में अब वो क्वालिटी रह नहीं गई है जो हम बार बार मैदानी प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी प्रतिद्वंदिता भारत और ऑस्ट्रेलिया की लगती है। तो वो मोरल डाउन है पाकिस्तान का, परफॉर्म नहीं कर पा रही है टीम, और कल श्रीलंका की चुनौती भी उनके लिए बहुत कड़ी होने वाली है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत कड़ी टक्कर या कोई उलट फेर की संभावना, लेकिन फिर ये अप्रत्याशित प्रारूप है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आकलन होता है, हमने पहले भी बात की थी कि वो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, रिकॉर्ड के आधार पर होता है, प्लेयर्स के फॉर्म के आधार पर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर होता है, और वहां मुझे लगता है श्रीलंका काफी आगे है।
6: राइट, सो होपफुली इट्स गोइंग टू बी ब्राइट डेज टुमारो फॉर एवरीवन। आई थिंक ब्राइट डेज तो ऑलरेडी हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए हो चुके हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं की टीम इस ऑन गोइंग एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एक बार फिर से पहुंच चुकी है, द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री फॉर द इंडियन वुमेन आउट देयर इन द एशिया कप और 2026। आनंद
1: जी, हाँ, 40 रन से आज भारत ने जीत दर्ज की है, और हम सब उम्मीद करेंगे कि जब रविवार को भारतीय टीम फाइनल में उतरेगी तो एक नया इतिहास लिखेगी। प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ने के लिए बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह जी आपका और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पाटसारथी आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम में हमें टेक्निकल सहयोग दिया लीला सेठी ने, उर्मिला कपिला और नागेंद्र पटेल ने, साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण में सहयोग प्राप्त हुआ वंदना भारद्वाज का, माधवी तिवारी का और स्वाति कपूर का, और इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।
6: नमस्कार।
9: प्लेयर ऑफ द मैच।
10: अभी आप विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
11: You have been listening to a special program, Player of the Match, of the first semi-final T20 cricket match played between India and Bangladesh of Women's Asia Cup T20 cricket tournament 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
12: Akashvani Kadapa Kendram. Repati prasaranlo udayam 6 gantla 10 nimishalaku Bhakti Ranjani indulo శ్రీ రాజరాజేశ్వరి మంత్ర మాత్రకాస్తవం వినవచ్చు, అనంతరం నాట్య కలాం వింటారు. ఇక ఉదయం 7:15 కాంతి రేఖలు, ఇందులో భాగవత కథాసుత పదవస్కందం ఉత్తరాధ్యాయం మొదటి భాగం అందిస్తున్నవారు ఆచార్య తుమ్మలపూడి కోటేశ్వరరావు గారు. అదేవిధంగా గాంధీ మార్గం కూడా వినవచ్చు. ఉదయం 10:00 కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా తీసుకువచ్చిన ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ నిబంధనలపై ప్రత్యేక కార్యక్రమం సమర్పణ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగం విజయవాడ కేంద్రం. మధ్యాహ్నం ప్రసారంలో 12:05 తిరిగి 2:30 కర్ణాటక సంగీతం, ఇందులో శ్రీ కెఎస్ మూర్తి బృందంచే శాక్సోఫాన్ వాయిద్యం వింటారు. 1:30 మహిళా భారతి స్త్రీల కార్యక్రమం, ఇందులో భట్టి విక్రమార్క భేతాళ కథలు ధారావాహిక అందిస్తున్నవారు శ్రీమతి బి సృజన కుమారి, అనంతరం వంట వార్పు కూడా వినవచ్చు. ఇక సాయంత్రం ప్రసారంలో 6:30 పల్లె ప్రాంతాలు. ఇందులో శ్రీమతి జి నాగసుబ్బమ్మ పాడిన జానపద గీతాలు వినవచ్చు. రాత్రి 7:15 పంట సీమల్లో సమతుల్య ఎరువుల వినియోగంలో జీవన ఎరువులు వాటి ప్రాముఖ్యత అనే అంశం గురించి డాక్టర్ కె సాయి మహేశ్వరి గారి ప్రసంగం వింటారు. అనంతరం రైతులకు సూచనలు కూడా వినవచ్చు. ఇక రాత్రి 7:30 దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్న మహిళల